0: Truth and Reconciliation. This initiative is made possible by the Community Radio Fund of Canada.
1: नमस्ते, मेरा नाम सानवी है और मैं दिल्ली, इंडिया में रहती हूँ. बॉर्न बे कम्युनिटी रेडियो 95.9 और 98.1 FM सुना रहा है आपको पूरी दुनिया सिर्फ www.vobb.org पे.